जी गुरु गरीब निवाज अंतरजामी सच्चे पातशाह जी महाराज आप जी के पावन स्थान दाजरिया भरते हो गुरु कियां संगत वालों गुरबाणी के कीर्तन सत्कार करते हो बेअंत माया अरदास कराई पातशाह सतगुरु आप नाम जानी कृपा करनी रहमत बख्शिश करनी देता दे नाम दात कर

हर जन्म मरण विहीन दस चार चार प्रवीण अकलंक रूप अपार अंशिज तेज उदार अनभिज रूप दुरंत सब

जगत रूप अखंड अतुल प्रताप प्रचंड। जेहे अंड ते ब्रह्मांड कीने सो चौदा खंड सब कीने जगत पसार अव्यक्त रूप उदार। जेहे

कहूँ शास्त्र सिमृत रीत, कहूँ वेद स्यों विपरीत। कई देश देश फिर अंत, कई एक ठौर स्थान्त। कहूँ करत जल मह जाप, कहूँ सहत तन परताप। कहूँ बास बन है करंत, कहूँ ताप तन है सहंत। कहूँ गृहस्त धर्म अपार, कहूँ राज रीत उदार। कहूँ रोग रहता भरम, कहूँ कर्म करता करम। कहूँ शेख ब्रह्म स्वरूप, कहूँ नीत राज अनूप।

जले हरि थले हरि उरे हरि बने हरि गिरे हरि गुफे हरि चिते हरि नभे हरि इहां हरि उहां हरि जिमि हरि जमा हरि अलेख हरि अभेख हरि अदुख हरि अद्वैख हरि अकाल हरि अपाल हरि अछेद हरि अभेद हरि अजंत्र हरि अमंत्र हरि सोतेज हरि अतंत्र हरि अजात हरि अपात हरि अमित्र हरि अमात हरि अरोग हरि अशोक हरि अभरम हरि अकर्म हरि अजय हरि अभय हरि अभेद हरि अछेद हरि अखंड हरि अभंड हरि अदंड।

ब्रशस्तु ही पतस्तु ही चितस्तु ही ऊर्धस्तु ही भजस्तु अंग रटस्तु अंग षटस्तु अंग जिमीतु ही जमातु ही मकीतु ही मकातु ही अभूतु ही अभतु ही अछूतु ही अछतु ही जतस्तु ही व्रतस्तु ही गतस्तु।

के सहित जो पिपाइये अतापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के किए तेजो पिपायत अजाप देव पूजना सदीव तुही तुही उचरत है। नभ के उड़े तेजो पे नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल बो करत है। आग में जरे ते गतरान की परत कर पताल के बसी क्यों भुजंग न तरत है। को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो को ब्रह्मचारी को जति अनुमान बो हिंदू तुरक को रावजी इमाम साफी मानस की जात सब एक पहचान बो। करता करीम सोई रस करहीम ओए दूसरों न भेद कोई भूल भ्रम मान बो। एक ही किसेव सब ही गुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो। देहो राम सीध सोई पूजाओ निवाज ओई मान सब एक पया नेक को भ्रमाओ है। देवता देव जच गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देश।

उठ आग उठे न्यारे न्यारे हुए के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है, दूर के कनु का फिर दूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। कित कछ मछ कित उनको करत भज, कित अच वच हो सब पच उड़ जाएंगे। कित नभ बीज अच पच को करेंगे।

स्वरूप अखंड प्रतापाद अक्षय विभूत न जन न वर्ण वर्ण न व्याधे अखंडे प्रचंडे दंडे साधे न नेहंग न गेहंग सने हंग सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे ब्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न मित्र स्वभूते भविख्य भवाने अचित्रे नारायंग नरंगंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न जोभंग भूतंग भेखंग न सतरंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदेवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग जो नीय छायाद अद्वय जोहंग न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधंग न रोगंग न शोकंग व्य निर्विखातंग अछेदंग भेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भर्मंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न भर्मंग सदेवंग सदा सिद्ध विरदंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे नृयुक्तं प्रभादनुक्तं प्रतापे अयुक्तं गच्छयाद अविक्तं यथा विभुक्तं गच्छयाद अच्छे स्वरूपे नमो एक रूपे न नेहं न गेहं न शोकं न साकं परेयं पवित्रं पुनीतं गतं न जातं न पातं न मित्रं न मंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न वर्मं न सर्मं न साकेन न वर्मं न चर्मं न कर्मं न वाकेन न सत्रं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो आद रूपे कहूं गंज के मंज के भरम भूले कहूं रंग के राज के।

देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जच विद्याधरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्ट की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बानी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ अत्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ मत्र बानी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टा चार चतरंग स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार बावे कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे कहूँ शुद्ध सिखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग ग्रहं कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राज साजं कहूँ राज रीतं कहूँ पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं कहूँ आरबी तोर की पारसी हो कहूँ पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूँ देश व्याख्या कहूँ देव बानी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारं कहूँ जंत्र रीतं कहूँ शस्त्र धारं कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगुला चारणी गीत चर्चा कहूँ बीन विद्या कहूँ गान।

अव्यक्त तेज अनुभव प्रकाश अक्षय स्वरूप द्वयना संतुट तेज अनघुट भंडार दाता दुरंत सर्वंग प्रकार अनुभूत तेज अंशिजगात कर्ता सदीव हर्ता सनाद आसन अडोल अनुभूत करम दाता दयाल अनुभूत धरम जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र व्रात नहीं मित्र मात जय करम वरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं व्योतबान जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं चिन्ह चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम धाम नहीं वर्ग व्याध जय रोग शोक नहीं सत्र साध जय त्रास वास नहीं देह नाश जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आस नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कट्यो न अंग अच्छा स्वरूप अक्षय अभंग जय नेत नेत उचरंत वेद जय अलख रूप कथत कतेव जय अलख रूप आसन अडोल जय अमित तेज अक्षय अतोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत तन शीत गाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार कई उर्ध बाह देशन भ्रमंत कई उर्ध मत पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्र उचरंत वेद कई कूक काव कथत कतेब कई यगन होत्र कई पौन हार कई कर्त कोट मृत को आहार कई कर्त साग पै पत्र भच्छ नहीं तदब देव हो वत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जग याद करम कहूँ अगन होत्र कहूँ तीरथ धरम कई देश देश भाखार टंत कई देश देश विद्या पढ़ंत कई कर्त भांत भांतन विचार नहीं नैकता सपायतन पार कई तीरथ तीरथ भरमत सो भरम कई यज्ञ होत्र कई देव करम कई कर्त पीर विद्या विचार नहीं तदब दास पायतन पार कहूँ राजरीत कहूँ जोग धरम कई सिमृत शास्त्र उचरत सो करम न्यौली याद करम कहूँ हस्तदान कहूँ अश्वमेध मख को बखान कहूँ कर्त ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ बिरद चार कहूँ कर्त जक्ष गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घदान कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ कर्त शास्त्र मृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई भ्रमत देश देशन उदास कई जन निवास कई अगर ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पंग प्रजंत नहीं तदब तास पायतन अंत कई कर्त कोट विद्या विचार नहीं तदब देश देखे मुरार बिन भगत सगत नहीं परत पान बहु करत हो मर जग दान बिन एक नाम एक चित्त लीन फोकटो सर्व धर्मा भीन त्वा प्रसाद तोटक छंद जय जंपह जुगण जूह जुअंग भय कंपह मेर पयाल भोंग तप ताप सर्व जलेर थलंधन उचरत इंद्र कुमेर बलंग अनखेद स्वरूप अभेद भयंगन खंड अभूत छेद छेंगन काल अपाल दयाल सोंग जय ठटियंग मेर आकाश भुअंग अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जय रचयंग देव देव बरंग सब किन्नी दीन जमीन जमा जय रचयंग सर्व मकीन मका जय राग न रूप न रेख रुखंग जे ताप न साप न शोक सुखंग जे रोग न शोक न भोग भुयंग जे खेद न भेद न छेद छयंग जय जादन पातन मात पितंग जे रचयंग क्षत्रि छत्र चितंग जय राग न रेख न रोग भणंग जे द्वैख न दाग न दोख गणंग जय अंड ते ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नवखंड सचयो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपिंद नगेंद नगंग श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव भेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेतज उद भुजंग किए देव देव श्राद्ध पितंगन खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जे तात न मात न भ्रात सुतंग जे रोग न शोक न भोग भुअंग जय जंपह किन्नर जच जुअंग नर नार नपुंसक जाह किए गण किन्नर जच भुजंग दिए गज बाजर थादिक पांत गणंग भव भूत भविख भवान तुअंग जय अंडज सेतज जेर रजंग रज भूम आकाश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बलि बन जास कियो फल फूल कली वो मेरा आकाश निवास चितंग रज रोज एकादश चंद्र पृतंग तुत चंद दिनी सह दीप दई जय पावक पवन प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाय दिए जय लोक चतुर्दश चार रचे नर गंधर्व देव देव सच्चे अंधूत भूत छूत मतंगन गाद ब्याद अनाद गतंगन खेद भेद छेद नरंग जय चार चतुर्दश चक्र फिरंग जय राग नरंग नरेख रुगंग जय शोक न भोग न जोग जुगंग भुव भंजन गंजन आदि सिरंग जय बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जाछ भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभान गंज मृतंग जय पारण पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूपा दंड प्रभा जय जंपत वेद पुराण सभा जय वेद कते अनंत कह जय भूत अभूत न भेद लह
जह वेद पुराण कते जपै सुत सिंध दो मुकताप तपै कई कल्पन लो तब ताप करै नहीं नैक कृपा नित पान परै जय फोकट धरम सबै तज है एक चित्त कृपा नित को जप है देव या भव सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कूट प्रति इम वेद उचार तसार सुती जो वारस के जस के रच है देव भूल न काल फंदा फस है त्व प्रसाद नराज छंद अगंज आद देव है अभंज भंज जानिया भूत भूत है सदा गंज गंज मानिया अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दास दीव सर्वसात है अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिया सदीव सिद्ध शुद्ध दा प्रताप पत्र जानिया न राग रंग रूप है न रोग राग रेख है अदोग दाग दग है अभूत भ्रम फेक है न तात मात जात है न पात चिहन वरण है अदेक से फेक है सदीव विश्व भरण है विश्वम्बर विश्वनाथ है विशेक विश्व भरण है जिमी जमान के विके सदीव करम भरम है अद्वैक है अभेक है अलेख नाथ जानिए सदीव सर्वठोर में विशेख अन्न मानिए न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण यो कुरान नेत नेत कै बतावई न करम में न धर्म में न भरम में बताइए गंज आद देव है कहो सु कैस पाइये जिमी जमान के विके समस्त एक ज्योत है न घाट है न बाढ़ है न घाट बाढ़ होत है न हान है न बान है समान रूप जानिए मकीन यो मकान अप्रमान तेज मानिए न देह है न गेह है न जात है न बात है न मंत्र है न मित्र है न तात है न मात है न अंग है न रंग है न संग है न सात है न दुख है न दाग है न द्वैख है न देह है न सिंह है न चार है न राव है न रंग है न मान है न मौत है न साक है न संक है न जश है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साव है न साह को कुमार है न नेह है न गेह है न देह को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अभेक है न तात है न मात है अख्याल खंड रूप है अचेद है अभेद है न रंग है न भूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अभंज है करीम है कुरान है अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न रोग है न सोग है न भेद है न भंड है न अंग है न रंग है न संग है न सात है प्रिया है पवित्र है पुनीत है प्रमात है न सीत है न सोच है न घ्राम है न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र के विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न द्वैख है न भेख है न दुई है न द्रोह है न काल है न बाल है सदीव दयाल रूप है अगंज है अभंज है अभरम है अभूत है अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत फेक है बलि रूप राग रंग है न द्वैख है न भेख है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्र चिहन वरण है बेअंत है अनंत तेज जानिए अभूम भिज है सदा छिज तेज मानिए न आद है न व्याद है अगाध रूप लेखिए दुख है अदाग है अच्छे प्रताप पेखिए न कर्म है न भरम है न धर्म को प्रभाव है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है न छल है न छिद्र को स्वरूप है अभंग है अनंग है अगंज से विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ मोहकार है न आद है न गाद है न व्याद को विचार है न रंग राग रूप है न रूप रेखरार है न हाव है न भाव है न दाव को प्रकार है गजाधपि नराधपि करंत सेव है सदा सिदस्पति तपस्पति वनस्पति जपस सदा अगस्त आद जे बड़े तपस्त पे विशेखिये बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखिये अगाध आद देव की अनाद बात मानिए न जात पात मंत्र मित्र शत्रु सनेह जानिए सदीव सर्वलोक के कृपाल ख्याल में रह तो

रूपरागना रेखरंगना जन्म मरण विहीन आदना अगाध पुरक सो धनम करम प्रवीण जंत्र मंत्रण तंत्र जाको आद पुरक अपार हस्त कीट बिखे बस सब ठौर मैं निर्धार जात पात ना तात जाको मंत्र मात न मित्र सर्व ठौर बिखे रमे जय चक्र चहन न चित

सोध सोध हटे सब हजुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गरब पड़त पड़त थके महागव गर्द गाढ़ अनंत हार हार कहे सब मिल नाम नाम दुरंत भेद भेद न पाये लखियो न सेवक देव देव दानो मूढ़ मानो जस न जाने जेब भूत भव भवान।

को आत्मा स्वरूप है कहाँ सृष्टि को विचार, कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा, कहाँ जी तब कह मरण है कवन सुरक कह नरक, को सुकुटा को मूर्ता कहाँ तरक कव तरक दोहरा, को निंदा जस है कवन कवन पाप का धर्म, कवन जोग को भूख है कवन कर्म अपकर्म दोहरा, कहो सुसम का शोक है दम को कहा कहंत, को सूरा दाता कवन कहो तंत को मंत दोहरा, कहाँ रंग राजा कवन।

दुर्जंदल दंडन असुर विहंडन दुष्ट निकंदन आद प्रत्ये चरा सुर मारण पति दोधारण नरक निवारण गूढ़ गते अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंडे उदंडे अलख मते जय जय हो सी मैं खा सुर मर्दन रमक परदन छत्र छिते आसुरी विहंडन दुष्ट निकंडन पुष्ट उदंडन रूप ते चंडा सुर चंडन मुंड विहंडन धूम्र विदुन सन मैक मथे दान प्रहारन नरक निवारण नदम उदारण ऊर्ध दे जय जय हो सी मैं खा सुर मर्दन रमक परदन आद प्रते डावरूडवंगे बबरबवंगे भुजा फरंगे तेज बरंग लंगुड़िया बांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायत चमके मुखण दमके अच्छे जमके पुंग फनंग जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन रमक बर्दन दैत जिनंग चंडासुर चंडन मुंड में मुंडन खंडे अखंडन कून किते दामनी दमंकण धुजा परंकण फणी पुंकारण जोत जिते सरधार विवरखण दुष्ट प्रकरखण पुष्ट प्रहरखण दुष्ट मथे जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन भूमा कासर उर्धे दामनी प्रहासन सुषम निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुर आचन युद्ध ब्रह्माचन हृदय नाचन धनम वृत्ते श्रोणंत अचिंती अनल पिबंती जोग जयंती खड़क धरे जय जय हो सी मैं का सुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अघ ओघ निवारण दुष प्रचारण।

उसी मांखा सुर मर्दन भूमा काश पताल जलंग चाचल चमकारण छिछुर हारण धूम धुंगारण द्रभ मथे दाढ़ विप्रतंते जोग जयंते मनुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य प्रतेजन अष्टभुजे जय जय उसी मांखा सुर मर्दन भरम विनाशन धरन धुजे घुंगुरु गमंकण सहस्रज मंकण फणियर पुंकारण धरम दुजे अष्टाड प्रहासन सृष्ट निवासन दुष्ट प्रणाम।

संकटे निवारण धम उदाहरण तेज प्रकरखण धुंद दुख दुख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद अगाध छे शुद्धता समर्पण तक वितरकण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय उसी सहस्र प्रकरखण आद अनिल अगाध भे चंचला जखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम उदारे तूर भुजे दामनी दमंके के हर लंके आद तंके क्रूर कथे जय जय ओसी रक्ता सुरखंडन सुंभ चक्रतन सुंभ मथे बारज बिलोचन वृतन विमोचन सोच बिसोचन कौज कसे दामनी ब्रहासे सुख सरना से शुभ्र सुभा से दुष्कसे चंचला ब्रहंगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय ओसी मैं खासुर मर्दन आद अनाथ का दुर्थंग घंट का विराजे रुण सुन बाजे ब्रह्म बाजे सुनत सुरंग को किल सुन लाजे किल विग बाजे सुकूप राजे मध्य उरंग दुर्जन दल दज्जे मंथन रिच्छे सब न भज्जे रूह रणंग जय जय हुसी मैं खासुर मर्दन चंड चक्रदन आद गुरंग चाचरी प्रजोदन दुष्ट विरोधन रोस रोदन क्रूर प्रत्ये धूमराज विधुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विधुंसन शुद्ध मते जाल पाजे अंते शत्रु मथंते दोष प्रदाहन गाढ़ मते जय जय हुसी मैं खासुर मर्दन आद जुगाद अगाद गते खत्रियाण खतंगी अभय अभंगी आद अनंगी अगाध गते ब्रिटलाज बिहंडन चछुर दंडन तेज प्रचंडन आद वृत्ते सुर नर प्रति पारण पति दोधारण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय उसी मैं खासुर मर्दन विश्व विजन संसिष्ट करे दामनी प्रकाशे उन्तन नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रकरखण सर्वर वरखण दुष्ट प्रतरखण पितल तले अष्टायत बाह

लक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना है दुष प्रदा है अर्दल गा है दुख हरे गंजन कुमाने अतुल प्रमाने संत जमाने याद अंते जय जय उसी मैं का सुर मर्दन साध प्रतक्षण दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ गहीली ज्योत चतीली धुंध मते अष्टायत जमकण शस्त्र जमकण दामिन दमकण आद प्रते डुक डुकी दमंगे बाघ बंगे भुजा फरंगे शुद्ध गते जय जय उसी मैं का सुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चछरा सुर मारण नरक निवारण पति दो धारण एक भट्टे पापान बिहंडन दुष्ट प्रचंडन खंड अखंडन काल कटे चंद्रानन चारे नरक निवारे पति दो धारे मुंड मथे जय जय हुसी मखा सुर मर्दन धूम्र विदुंसन आद कथे रक्ता सुर मर्दन चंड चक्र दंदन वर्दन मिडाल वदे सरधार विपरखण दुर्जन धरखण अतुल अमरखण धरम धुजे धूमराज विदुंसन सुवर्ण तुंसन सुम

जंगसो दानव देवा वेव तुम्हें सब ही कर दिया वह भूम आकाश पताल रसातल जच्छ भुजंग सब सरण्या वह पाए सके नहीं पार प्रभा हूं को नेत ही नेत वेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे नारद से चतुरानंद से रुमनारिक से सब हूं मिल गायो वेद कतेव न भेद लखयो सब हार परे हर हाथ न आयो पाय सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनात सनंतन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन में जह को अमितोज सब जग छायो वेद पुराण कतेव कुरान अभेद नृपान सब पजहारे भेद न पाए सक्यो अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग त्यारे याद नाता गाद बेगत वैख जप्यो तिन्हि कुल तारे तीरथ कोट किए स्नान दिए बोधान महाव्रत धारे देश फिरो कर भेस बोधन के सरे न मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे बहुन्यास करे मुख कारे दीन दयाल काल बजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे त्व प्रसाद कबित अत्र के चलैया छिद छत्र के धरैया छत्र धार्यो के छलैया महा सतरण के साल है दान के दिवैया महा मान के बढ़ैया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महा बुद्ध के दिवैया महा मान हूँ के मान है ज्ञान हूँ के ज्ञाता महा बुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है पूर्वी न पार पावे हिंगुला हिमालय ध्यावे गोर गर दे जी गुण गावे तेरे नाम है जोगी जोग साधे पौन साधना कि तेग बांधे अरब के अरबी आराध्य तेरे नाम है फरा के फिरंगी माने कंधारी को जाने पश्चिम के पश्चिमी पछाने निज काम है मरट्टा मंगल तेरे मन सो तपस्या करे दृढ़ वैद रंग पहचाने धर्म धाम है बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दलवाली तेरी आगे में चलत है रोह के रोहेले माग देश के मंगेले वीर बंग से बंदेले पाप पुंज को मलत है गोखा गुन गावे जिन मशीन के शीस ने आवे देवते दे आए दुख देह के दलत है जिन्हें तोहे जायो तिन्हे पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल स्यों फलत है देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग दान को अभेश कहियत है रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे न दीन साधा दीन कहियत है पाई न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है हाथी की पुकार पल पाछे पहुजत ताहि चिट्ठी की जिंगार पहले ही सुनियत है किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार किते कृष्णा अवतार किते राम कहियत है किते ससरासी किते सूरज प्रकाश किते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है किते महाधीन किते व्यास प्रवीण किते कुमेर कुलीन किते जच कहियत है करते हैं विचार पैन पूर्ण को पावे पार ताहिते अपार निराधार लहियत है पूर्ण अवतार निराधार है न पारावार पाइये न पार पे अपार के बखानी है अद्वै अपिनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूं के राशि है अनासी के मानी है जंत्र हूं न जात जा के बाप हूं न मायता के पूर्ण प्रभा के सोचटा के अन मानी है तेज हूं को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कह के जानी है तेज हूं को तार है के राजसी को सार है के शुद्धता को खर है के सिद्धता की सार है कामना की खान है के खातना की शान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूं को रूप है कुमद को प्रहार है दीनन को दाता है गनी मन को गारक है साधन को रक्षक है गुणन को पहार है सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है काम को कुनिंदा है के खूबी को देहंदा है गनी मन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है काल हूं के काल है के सतरण के साल है के मित्रण को पोकत है के वृद्धता की बासी है जोग हूं को जंत्र है के तेज हूं को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को बास है के बुद्ध हूं को खर है देवन को देव है निरंजन अभेव है देवन को देव है के शुद्धता को सर है जान को बचैया है ईमान को देवैया है जंजाल को कटैया है के कामना को कर है तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है नर है विश्व को वर्ण है के आपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है पाई है न पार पार अवार हूं को पार जागो की जत विचार जो विचार को निवास है हिंगुला हिमालय गावे हबसी हलप विद्या पूर्वी न पार पावे असत अनाश है देवन को देव महादेव हूं के देव है निरंजन अभेवनाद अद्वै अविनाशी है
अंजन विहीन है निरंजन प्रवीन है क सेवक अधीन है कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव हूं के देवनाथ भूम के भुजैया है मुहैया महाबाल के राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग हूं को जोग है धरैया ध्रुम छाल के कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसे छीरा वध छाज कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छब काल इंद्र के कूल के हंस निश सिंहा रूम ही रसी हो सन्नावाद गंगा कैसी धार चले सातो सिंध रूल के पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसे रामपुर सूरसी सुरंगाबाद निके रही झूल के चंपा से चंदेरी कोट चांदनी से चांदागढ़ की रत्ते हारे रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसे पुर सी ससी सुरंगाबाद निके सोहियत है हिमा से हिमालय हर हार सी हलब्बा नेर हंस कैसे हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा से चंद्रगिर चांदनी सी चंदगढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंगधार बकान से बिलंदावाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी के दुरंगी मकरान के प्रतंगी तेरे गीत गायत है फकरी कंधारी गोर कखरी कर चारी पवन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व ठौर मैं बिराज जहाँ जहाँ जाइयत है पूर्ण प्रतापी चंद्र मंत्र।

से जन जुग मैं सुखवासी से मुकत पए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन हर निर्भव त्याया जी तिनका पाओ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से

निसोम सोम कोप कै पटियो सुपाम रूप कै कहो कि शीघ्र जाइयो दुर्गा ब्यांद लियाइयो चढ़ियो ससैन सज कै सकोप सूर गज कै उठे बजेंद्र बाज कै चलियो सुरेश भाज कै अनंत सूर संग लै चलियो सुधुंद बीन दै हकार सूरमा परे विलोक देवता डरे मदभार छंद कंप्यो सुरेश बुलियो महेश किन्नो विचार पुछे जुजार की जै सो मित्र कौने चरित्र चाते सो माय जीते बनाए सकत निकार भेजो अपार सतरुण जाय हण है रिसाय सोई कायम कीन देवन प्रवीण सकत निकार भेजी अपार बिरद निराज छंद चली सो सख्त शीघ्र शीघ्र पान पान।

करै सो होए चौपाई। शिव दूती दुर्गा बुलाई, कान लाल निके समझाई। शिव को भेज दीजिए तहां, दैत राज स्थित है जहां। शिव दूती जब इम सुमद पावा, शिवै दूत कर उतै पठावा। शिव दूती तांते पयो नामा, जानत सकल पुरख अरबामा। शिव कई दैत राज सुन बाता, ए विद कौ तुम जगमाता। दैत दैवन को दै कै ठकुराई, कह मांडव हम संग लड़ाई। दैतराज ए बात न मानी, आप चले जूझन अभिमानी। गर्जत काल काल ज्यों जहां, प्राप्त पयो असुर पतहां। चमकी ता असन की तारा, नाचे भूत प्रेत बै तारा। फरके अंध कबंध अचेता पिभरे, भाई रव भीम अनेका। तुरही ढोल नगारे बाजे, भांत भांत जो धारण गाजे। डड डफ डमरू डुगडुगी घनी, नाए नफीरी जात ना गनी मदभार। हुंके की गाण तुमके निशान, सजे सो वीर गजे गहीर। चुझे निझक बजे बक, सजे सुबा अछरे शाह। खटे की गाण फुटे चवान, सूलंग सड़ाक उठे कड़ाक। गजे जुआन बजे निशान, सजे रजेंद्र गजे गजेंद्र। भुजंग प्रयात छंद फिरे बाजियंग, ताजियंग इत उतंग। गजे वारुणंग दारुणंग, राजपुत्रंग बजे। संग पेरी उठे संग नादंग, रणंग नफीरंग। तुणंग निर्विखादंग, कड़क के कृपाणंग। सड़क कार सेलंग, उठी कूजूहंग। पई रेल पेलंग, रुले तज मुछंगरे। चार चीरंग कहूँ हाथ मथंग, कहूँ बरम वीरंग। रसावल छंद बलि बैर रुझे, समय सार जुझे। संभारे हथियारंग, बकै मार मारंग। सबै शस्त्र सजे, महावीर गजे। सरंग ओग छुटे, कड़ंकार उठे। बजै बाद्रते अंग, हसै गांधर भे अंग। झंडा गड जुटे, सरंग संज फूटे। चहूं ओर उठे, सरंग ब्रिष्ट बूठे। करो दी करालंग, बकै बेकरालंग। भुजंग प्रयाद छंद कितै कुठी अंग, बुठी अंग ब्रिष्ट बाणंग। रणंग डुली अंग, बाज खाली पुराणंग। जुजय जोधि अंग, वीर देवंग अदेवंग। सुबे शस्त्र साजा, मनो शांत निवंग। गजे गजी अंग, सर्व सजे पवंग अंग। जुदंग जुटी अंग, जोध छुटे खतंग अंग। तड़के तबलंग, चढ़ंके कृपालंग। सड़ककार सेलंग, रणंके निशानंग। टमा टम ढोलंग, ढला ढोक ढहलंग। गह जू गजे हयंग, हाल चालंग। सटा सट सेलंखा, खून खंगंग। टुटे चरम बरम उठे, नाल अगंग उठे। अग नाल खोल खंगंग, निशा मापसी जान मासान जगंग। डकी डाकनी डामरू डौर, डकक नचे वीर बैताल। भूतंग पपकंग, बेली बिंद्र पिछान। सर्व सत्र अवद भेजिते, सब काट दीन दुर्गा तिथे। अर और जेत कडारियंग, ते उगाड भूम तारियंग। सर आप काली छंडियंग, सर्वा सत्र सर्वास्त्र सत्र बिहांडियंग। सत्रहीन जवै निहारियो, जय शब्द देवन चार्यो। नभ मद बाजन बाज ही, अवलोक देवा गाज ही। लख देव बारंग बार ही, जय शब्द सर्व पुकार ही। रण कोप काल करालियंग, खट अंग पाण शालियंग। सिर सोम हाथ दो छंडियंग, एक चोट दुष्ट बिहंडियंग। दोहरा जिम सुंभा सुर को हना, अधिक कोप कै काल। त्यों साधन के सत्र सब, चांबत जाहे कराल। एत श्री बचित्र नाटके, चंडी चरित्रे। सोम बदे कष्ट मोति आय, संपूर्ण मास मास अवजोम। अथ जयकार शब्द कथनंग, बेली बिंद्र मशांद। जय शब्द देव पुकार ही, सब फूल फूल डार ही। कणसार कुंकम लियायिका, टीका दियो हर खायिका। चौपाई उस्तत सबू करी पारा, ब्रह्म कवच को जाप उचारा। संत सबू प्रफुल्लित पाए, दुष्ट अरिष्ट नाश पै गाये। साधन को सुख बड़े अनेका, दानव दुष्ट न बाचा एका। संत सहाय सदा जग माई, जय तह साधन हो हे सहाई। देवी जू की उस्तत भुजंग प्रयात छंद। नमो जोग ज्वालंग, तरियंग ज्वालंग। नमो सुंभ हंती, नमो क्रूर कालंग। नमो श्रोण वीर जार दनी तुम्र हंती। नमो काल का रूप ज्वाला जयंती। नमो अम का जम्भा ज्योत रूपा। नमो चंड मुंडार दनी भूपा। नमो चामरंग चीरणी चित्र रूपंग। नमो परम प्रज्ञा विराजय अनुपंग। नमो परम रूपा, नमो क्रूर कर्मा। नमो राजसा साधका परम वर्मा। नमो मैंग दैत गौंत करणी। नमो तोकणी सोकणी सर्व इरणी। बिड़ा लाछ हंती करु राच काया, दिजक दियार दनियंग। नमो जोग माया, नमो भई रवि भाव गवियंग। भवानी नमो जोग ज्वालंग, तरी सर्वमानी।
आदि उर्दवी आप रूपा पारी रमा रष्ट री काम रूपा कुमारी पवि पावनी भई रवि भीम रूपा नमो हिंगुला पिंगुला यंगनुपा नमो जोदनी क्रोधनी क्रूर कर्मा मां बोधनी सिदनी सुध कर्मा परि पद्मनी पार्वती परम रूपा शिवी वासवी ब्राह्मी रिदगूपा मिड़ा मार्दनी सूरतवी मोहकर्ता परा पाष्टणी पार्वती दुष्ट हरता नमो हिंगुला पिंगुला तोतलायंग नमो कर्तकयानी शिवा शीतलायंग पवि पहार गवियंग नमो शत्रुपाणंग नमो असर तरता नमो तेजमाणंग जया अजया चरमणि चावंडायंग कृपा कालकायंग नयंग नित न्यायंग नमो चापणी चरमणि खड़क पाणंग गदा पाणनी चक्रणी चेतन माणंग नमो सूलनी सैथनी पाण माता नमो ज्ञान विज्ञान की ज्ञान ज्ञाता नमो पोखणी सोखणी अंग मृणाली नमो दुष्ट दुखारदनी रूपकाली नमो जोग ज्वाला नमो कर्तिकयानी नमो अमका दोतला श्री भवानी नमो दोखदाही नमो दोख्य हर्ता नमो शास्त्रनी आश्री कर्म करतया नमो रिष्टनी पोष्टनी परम ज्वाला नमो तारणी अंग नमो वृद्धबाला नमो सिंह बाही नमो दाड़ गाड़ंग नमो खग दगंग चमा चम बाड़ंग नमो रुड़ गुड़ंग नमो सर्व्यापी नमो नित नारायणी दुष्ट खापी नमो रिद रूपंग नमो सिद्ध करणी नमो पोखणी सोखणी सरभरणी नमो आर्जनी मार्जनी काल राती नमो जोग ज्वालंग तरी सर्वदात्री नमो परम परमेश्वरी धर्म करणी नई नित नारायणी दुष्ट धरणी छला अछला ईश्वरी जोग ज्वाली नमो बर्मणी चरमणी गुरूर काली नमो रेतका पूरका प्रात संध्या जिन्हें मोह कह जाऊ लोग बंदिया नमो अंजनी गंजनी सर्व अस्त्रा नमो धारणी उबारणी सर्व शस्त्रा नमो अंजनी गंजनी दुष्ट गर्भा नमो तोखणी पोखणी संसर्वा नमो शक्तनी सूलनी खड़क पाणी नमो तारणी कारणी अंकिर पाणी नमो रूप काली कपाली अनर्दी नमो चंद्रणी पान वियंग बिंदी नमो छैल रूपा नमो दुष्ट धरणी नमो कारणी धारणी श्रेष्ठ परणी नमो दारखणी बरखणी शास्त्र तारा नमो तारणी कारणी अंगपारा नमो जोगणी भोगणी परम प्रज्ञा नमो देव दैत्यायणी देव दुर्गा दुर्गिया नमो कोर रूपा नमो चार नैणा नमो सुलनी सैतनी बकर बैणा नमो भृद बुद्धा करी जोग ज्वाला नमो चंड मुंडी मृा क्रूर काला नमो दुष्ट पुष्टार्दनी जेम करणी नमो दाड़ गाड़ा तरी दोख्या हरणी नमो शास्त्र बेता नमो शास्त्र कामी नमो जच विद्या तरी पूर्ण कामी दिपंग तापणी जापणी सर्वलोगा थपे खापणी खापणी सर्व सोगा नमो लंकुड़ेसी नमो शक्त पाणी नमो कालका खड़क पाणी कृपाणी नमो लंकुड़ेसा नमो नगर कोटी नमो काम रूपा कमश्या करोटी नमो काल रात्रि कबरदी कल्याणी महारिधणी सिद्ध दाती कृपाणी नमो चतुर्बाही नमो अष्टबाहा नमो पोखणी सर्व आलंबनाहा नमो अमका जंबहा कार्तिकयानी मृाली कपरती नमो श्री भवानी नमो देव अर्ध्यायनी दुष्ट हंती सीता असिता राजक्रांति अनंती ज्वाला जयंती लासी अनंती नमो पार ब्रह्मी हरिशी मुकंदी जयंती नमो मंगला कालकायंग पाली नमो भद्रकाली शिवायंग दुर्गायंग क्षिमायंग नमो तात्रियंग सुभा सुहायंग नमो शीतलेयंग नमो चरबणी सर्वधर्मंग तुजायंग नमो हिंगुला पिंगुला अंबिकायंग नमो दीर्घदाड़ा नमो श्यामवर्णी नमो अंजनी गंजनी दैतधरणी नमो अर्धचंद्रायणी चंद्रचूड़ंग नमो इंद्र ऊर्धा नमो दाड़ गुड़ंग ससंग शेखरी चंद्र भाला भवानी पवि भैरवी पूत राटी कृपानी कली कारणी कर्म करता कमच्छिया परि पद्मनी पूर्णी सर्व इच्छिया जया जोगणी जग करता जयंती सुभा स्वामनी सृट जा सत्र हंती पवित्री पुनीता पुराणी परेयंग परभी पूर्णी पार ब्रह्मी अजयंग अरूपंग नूपंग नाम ठापंग अपीतंग अजीतंग मा धर्मतामंग अशेतंग भेदंग कर्मंग सुतर्मंग नमो पाण पाणी तरे चरम बरमंग अजयंग पेयंग निरंका नित्रयंग नमो निरूपंग निर्वाणंग नमित्यंग अकित्यंग गुरी गौर जा काम गामी गुपाली बलि वीरणी भावना जग्या ज्वाली नमो सत्र चरमायणी गर्भहरणी नमो तोखणी सोखणी सर्वपरणी पिलंगी पवंगी नमो चरचितंगी नमो पावन भावनी पूत हंता पड़ेंगी नमो भीम रूपा नमो लोक माता पवि भावनी पविख्याता विधाता प्रभी पूर्णी परम रूपंग पवित्री परिपोखणी पार ब्रह्मी गायत्री जटी ज्वाल परचंड मुंडी चमुंडी बरंगदायिनी दुष्ट हंती अखंड दुष्ट खंडी अखंडी सब संत बारी बरंग

एत श्री बचेतन नाटके चंडी चरित्रे चंडी चरित्र उस्तद वर्णनंग नाम अष्टमोत्याय संपूर्ण मास्त शुभ मास्त अफजों।

जब आओ कि औद निदान बने अत हिरण में तब जूझ मरो दोहरा। सत्रह सह पैताल में सावन सुथित दीप नगर पामटा शुभ करण जमुना वह समीप दोहरा। दसम कथा भागौत की भाखा करी बनाए अवर बासना नाहे प्रभ धर्म युद्ध के चाय सवैया। धन जियो तै को जग में मुखते हर चित में युद्ध विचार देह नित न नित रह जस नाव चढ़े पोसा गुरदार। धीरज धाम बनाए ए है तन बुद्ध सो दीपक ज्यों जिया रै। ज्ञाने की बढ़नी मनो हाथ लै कातरता कुदवार बुहार है। एत श्री दसम सिकंद पुराणे बचित नट ग्रंथे कृष्णा अवतार ध्याय समाप्त।

औरण कहाँ उपदेश सत है पास तो ही प्रबोधन लागो सिंह का प्रेम बिखिन गया है कबो बिखे रख त्यागो केवल कर्म परम से चीन हो कर्म धर्म अनुराग संग्रह करो सदा सिमरन को परम पाप दज भागो जाके दुख पाप न पेटे काल जाल दिता को जो सुख चाओ सदा समन का ताओ हर के रस भागो सोरण पातशाही दसवीं प्रभ जो तो कह लाज हमारी नीलकंठ नर हर नारायण नील बसन बनवारी राम परम प्रभु परमेश्वर स्वामी पवन पवन आहारी माधव महाजोत मद मर्दन मान मुकंद मुरारी निर्विकार निर्जुर निद्रा मेन निर्विघ नरक निवारी कृपा सिंध काल त्रय दर्शी कुकृत प्रनाशन हरि तन परम त्रित मान तरा तर अनक अन विकार अस्तारी हौम मंद चरण शरणागत कर गह लेह उवारी रा कल्याण पातशाही दसवीं बिन करतार न कीर्तन मानो आद अजोन अजय अविनाशी तय परमेश्वर जानु रहा कहाँ भजो जो आन कीर्तमय दशक असुर हर कहाय अधिक प्रपंच दिखाए सभन कहे आपे ब्रह्म कहाए भंजन करण समृत सिता प्राप्त सो किम जात गिनायो ताते सर्वकाल के असो कहे बचना कैसे तो तार है सुन जड़ आप डिव्यो पवसक छुड़ो काल फांस ते तभी गौ शरण जगत आकर के अल पाशाही दसवी मित्र प्यारे नु हाल मुरीदा दा कहना तुतवी रोग रजाइया दा ओढ़न नाग निवासां दे रहना सुल सुराई खंजर प्यारा बेंग कसाइया दा सहना यारड़े दा सानू सत्थर चंगा पाठ केड़िया दे रहना तलंग काफी पातशाही दसवी केवल काल ही करतार आद अंत आनंद मूरत गणन भंजन हर रहा नेंद उस्तन जान के सम सत्र मित्र ना कोई कौन बाट परीत सह पथ सारथी रत होए तात मातना जात जाकर पुत्र पौत्र मुकांद्र कौन काज कहाएंगे ए आन देव कनंद देव दैत सब सज कीन सरबसार कौन उपमा तन कौ मुख लेत नाम मरार राग लावल पातशाही दसवी सो किम मन स्वरूप का हाय सिद्ध समाद साध कर हारे क्यों हुना देखन पाए रहाओ नारद व्यास परासरत रूप से त्याव ध्यान लगाए वेद पुराण हार हठ छठ यो तदप ध्यान नहीं आए दानव दे पिशाच प्रेत नित नित बताए छूचम ते सूक्ष्म कर चीने बृदन बिरद बताए भूमकाश ताल सब सबै सज एक अनेक सदाए सो नर काल फांस ते बाँचे जो हर शरण सिधाए देव गंधारी पातशाही दसवी एक बिन दूसर सिंह एक बिन दूसर सोना चिनार भंजन गण समर्थ सदा प्रभ जानत है करतार रहा कहा भयो जो आत हित चित कर बहित सिला बजाई पान थक्यो पान कर पड़सत कच कर सिद्ध न आई अछत धूप दीप अर्पत है पान कछु न खै है तामे कहा सिद्ध है रे जड़ तोहे कहा बरद है जा जिया होत देत कश तोहे मन बच कर्म विचार केवल एक शरण स्वामी बिन यों ना कतह उधार देव गंधारी पाछी दसवी बिन हर नाम बजन पह चौदह लोग जाए बस कीने तांते कहां पलह रहाव राम रहीम बारना साक है जाकर नाम रटै है ब्रह्मा विष्ण रुद्र सूरज सास ते बस काल सबै है वेद पुराण कुरान सबै मत जाके नीत कह है इंद्र फनेन्द्र मुनेन्द्र कल्प बहो त्याव ध्यान न है जाकर रूप रंग नहीं जनियत सो किम श्याम कह है छुटो काल जालते तभी ताहे चरण लपट है एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री भगवती ए नमः है अथ पखियान चरित्र लिखिया ते पातशाही दसवीं भजंग प्रियात शांतता प्रसाद तुई खड़क तारा तुई बड़वारी तुई तीर तलवार काती कटारी हलबी जुनबी मगर भी तुई है तिनिहारो जा आप ठाठी वही है तुई जोग माया तुई बाकबानी तुई आप रूपा तुई श्री भवानी तुई बिष्ण तू ब्रह्म तू रुद्र राजै तुही विश्व माता जगा सदा जय विराजै तुही देव तू दैत तैं जच पाए तुही तुर्क हिंदू जगत मैं बनाए तुही पंथ वै अवतरी श्रेष्ठ माही तुही भगत ते ब्रह्म बकाई तुही भगत रूपा तुही चार नैना तुही रूप बाला तुही बकर बैना तुम्हें भगत ते वेद चारो उचारे तुम्हें सुम नै सुम दानो संघारे जगे जंग तो सौ भजै भूपारी बधे छाठ बाना घड़ी बाड़वारी तो नर सिंह वै कै हिरन नाश मारियो तुम्हें दाड़ पै भूम को भार धारियो तुम्हें राम वै कै हठी दैत गायो तुम्हें कृष्ण वै कंस के सिख पायो तुम्हें जाल पार काल का कै बखानी।
ਤੂੰ ਹੀ ਚੌਦਹੂੰ ਲੋਕੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਾਲ ਕੀ ਰਾਤ ਰਵੈ ਕੈ ਬਿਹਾਰੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਆਦ ਉਪਾਵੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਅੰਤ ਮਾਰੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਕੈ ਬਖਾਨੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਚੌਦਹੂੰ ਲੋਕੀ ਆਪ ਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਲੋਕ ਉਗਰਾ ਤੋ ਉਗਰਾ ਬਖਾਨੈ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਅਦਰਜਾ ਬਿਆਸ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਅਦਰਜਾ ਬਿਆਸ ਬਾਣੀ ਪਛਾਣੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸੇਸਕੀ ਆਪ ਸਿਜਿਆ ਬਨਾਈ, ਤੂੰ ਹੀ ਕੇਸਰੀ ਬਾਣੀ ਕੈ ਕਹਾਈ, ਤੂੰ ਦੋਸਾਰ ਕੁਟਾਨ ਕਰ ਗਏ ਸੁਹਾਜੋ, ਤੂੰ ਹੀ ਚੰਡ ਅਮੁੰਡ ਦਾਨੁ ਖਪਾਜੋ, ਤੂੰ ਹੀ ਰਖਤ ਬੀਜਾਰ ਸਭ ਜੁਦਗੀਰੋ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ ਰਖ ਦੇ ਲੀਨੋ, ਤੂੰ ਹੀ ਮਹਿਕ ਦਾਨੁ ਬੜੋ ਕੋ ਭਗਾਇਓ, ਤੂੰ ਮਰਾਜ ਵਾਲਚ ਕੈ ਕੀ ਸੋ ਜਗਾਇਓ, ਤੂੰ ਹੀ ਕੌਚ ਬਖਤਰਾਪ ਨੇ ਤੇ ਉਚਾਰਿਓ, ਬਿੜਾ ਲਾਛ ਔਚ ਛਰਾਸ ਬਿਡਾਰਿਓ, ਤੂੰ ਹੀ ਡਗ ਡੈ ਕੇ ਡਬਰਕ ਪਜਾਇਓ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਹਿ ਹਸੀ ਜੋਧ ਭਾਇਓ, ਤੂੰ ਹੀ ਅਸ਼ਟ ਅਸ਼ਟਾਥ ਮੈਂ ਅਸਤ੍ਰ ਧਾਰੇ, ਅਜੈ ਜੈ ਕਿਤੇ ਕਿਸ ਹੁੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਹੀ ਮੰਗਲਾ ਰੂਪ ਕਾਲੀ, ਕਪਾਲਨ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਭਦਰ ਕਾਲੀ, ਦੁਰਗਾ ਤੂੰ ਸ਼ਿਮਾ ਤੂੰ ਸ਼ਿਵਾ ਰੂਪ ਤੇਰੋ, ਤੂੰ ਧਾਤਰੀ ਸਵਾਹਾ ਨਮਸਕਾਰ ਮੇਰੋ, ਤੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਤ ਸੰਧਿਆ ਰਣਬਸ ਧਾਰੇ, ਤੂੰ ਮਧਿਆਨ ਮੈਂ ਸੁਗਲ ਅੰਬਰ ਸੁਧਾਰੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਪੀਤ ਬਾਨਾ ਸਿੰਘ ਕਾਲ ਧਾਰਿਓ, ਸਵੈ ਸਾਧਵਨ ਕੋ ਮਾਂ ਮੁਨ ਟਾਰਿਓ, ਤੂੰ ਹੀ ਆਪ ਕੋ ਰਖਤ ਤੰਤਾ ਕਹਿ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਬੇਬਰ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਗੁਜਬੈ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਨੰਦ ਕੇ ਧਾਮ ਮੈਂ ਅਵਤਰੈਂਗੀ, ਤੂੰ ਸਾਕੰਗ ਪਰੀ ਸਾਖ ਸੋ ਧਨ ਪਰੈਂਗੀ, ਤੂੰ ਬੋਧਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮੱਛ ਕੋ ਰੂਪ ਕਹਿ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਕੱਛ ਵਹਿ ਕਹਿ ਸਮੁੰਦਰ ਮਥੈ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਆਪ ਦਿਜ ਰਾਮ ਕੋ ਰੂਪ ਧਰ ਹੈ, ਨਿਛਤਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਰ 21 ਕਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਆਪ ਕੋ ਨੇ ਕਲੰਕੀ ਬਣਾ ਹੈ, ਸੁਬਹ ਹੀ

दोहरा माँ काल की जय। शरद परे सो लय बचाए, और ना उपजा दूसर जग पछे उस भय बनाए। जय पूजा सकेत की नित प्रत करै बनाए, तिन पर अपनो हाथ दय आस तुज लेत बचाए। चौपई दुष्ट दैत कशपात ना जानी, महाकाल तन पुनरिष्ठानी। बल अप बल अपनो ना बिचारा, गर्भठान जे बहुत बौहर हंकारा। रेरे काल फूल जिन जाहो, बहर आन संग्राम चाहो। एक निदान करो रणमाही, कह अस तुझत कह दानव नाही। एक पावता युद्ध ना भाजा, महाराज दैतन का राजा। आंताओ गीत गगन लै गए, बात बिसिख तो हट पाए। असुर अमित रण बाण चलाए, निर्गज खड़क तुज काट गिराए। बीस सहंत्र असुर प्रबाना, श्री अस तुझ छाड़े बिदनाना। महाकाल पुन जी मैं कोपा, तनुख टंकोर बहुर रण रूपा। एक मानते तुझे गिरायो, द्वितीया सत्र को शीस डायो। दोम बिसिक कर द्वैर अति चक्र, काट दए छिन एक मैं बकर। चारे बाण चार हूं बाजा, मार दए सब जके राजा। बर असुर का गाड समाथा, श्री अस के जगत के नाथा। द्वितीय बाण सौ दो हर कर, काट दयो अस तुज नर नाहर। पूर्ण राक्षस का काटा सीसा, श्री अस के जगत के ईसा। पौपन ब्रिष्ट गगन ते पई, सब हिन आन बधाई दई। धान्य धान्य लोगन के राजा, दुष्टन दा गरीब निवाजा। अखल पवन के सृजन हारे, दास जान मुले हुबारे। कवियो बाज बिनती जाओ पई, हमरी करो हाथ दय रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतबारा, हमरे दुष्ट सुबह तुम कावा हो। आप हाथ दय मोहे बचावा हो, सुखी बसै मोरो परवारा। सेवक से सुबह करतारा, मोह रक्षा निज कर दय करिया। सब वैरण कौ आस संगरिया, पूर्ण होए हमारी आशा। तोर भजन की रह प्यासा, तो मैं शाड कोई अवर ना त्याऊं। जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सेखिया मारे तारिया। चुन चुन सत्र हमारे मारिया, आप हाथ है मुझे वरिया। मरण काल का त्रास निवरिया, पूजो सदा हमारे पच्छा। श्री अस तुझियो करियो रक्षा, राख लियो मुझे रखन हारे। साहिब संत साहे प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता। तुमो प्री चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा अवतरा। काल पाए शिवजी अवतरा, काल पाए कर विषम प्रकाशा। सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो। वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो, जमन काल सब लोक सवारा। नमस्कार है ताहे हमारा, जमन काल सब जगत बनायो। देव दैत जक्षण उपजायो, आद अंत एक है अवतारा। सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसी को हमारी। सकल प्रजा जिन आप सवारी, शिवकन को सबगन सुख दियो। सतरन को पल मुबद कियो, कट कट के अंतर की जानत। भले बरे की पीर पिछानत, चिटी ते कुंचर अस्तूला। सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी। सुख पाए साधन के सुखी, एक एक ही पीर पछान है। घट घट के पट पट की जान है। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह पारा। जब अकरख करत हूँ कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब धारह, आप अपनी बूझ उचार है। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल नाद संभ। ताका मूल चारत भेदा, जाको भेव न पावत भेदा। ताको कृपाहन अनमारत, महा मूल कछ भेद न जानत। महा देव कौ कह सदा शिव, निरंकार का चीनत न भेव। आप अपनी बुध है जेती, वर्ण भिन्न भिन्न तो देती। तुमरा लखा न जाए पसारा, कह विद सजा प्रथम संसारा। एक है रूप अनु सरूपा, रंग भयो राव कही पूपा। अंडज जे रज से तज कीनी, उदपुज खान बहुर रज दीनी। कऊ फूल राजा वह बैठा, कऊ सिमट पयो संकर कैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए चंभव, आज जुगात स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संघरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रण कहता। जे अस तुझता शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तवय मरे। पुरख जमन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक भारती है, ताके काल निकट नहीं आय है। रक्षा हुए ताई जब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मैं हर हो। रिद्ध सिद्ध करमो सब होई, दुष्ट छाछ वैस कह न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल पांचते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दैले हो उबारी।
ਸਰਬ ਠਾਰ ਮੋਹ ਹੋ ਸਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲੇਹੋ ਬਚਾਈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹਮ ਪਰ ਜਗ ਮਾਤਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਾ ਪੂਰਨ ਸੁਭਰਾਤਾ। ਕਿਲ ਬਿਖ ਸਕਲ ਦੇਹ ਕੋ ਹਰਤਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਅਨ

सचतर कृण सर विचार सचा तरम सचा दिवान सचा तेरा हुक्म सचा प्रमाण सचा तेरा कर्म सचा निशान सचे तु दाखे लख करोड़ सचे सबतान सचे सब जोर सची तेरी सबद सची साला सची तेरी कुदरत सचे बादशाह नानक सच धन सच जो मर्द में सो कच निकल।